0: Radio Simon 89.8 MHz.
1: कति राम्रो सुन्नुलाई त्यही जान मलाई आहा कति राम्रो

0: कौन?
1: पता नहीं, दांपी की गाड़ी चला रहा था, मरती मरती बची हूँ मैं।
2: फालतू है सारा, मुफ्त में सुना है, मत देख उसको।